0: ናውሪት ነናዋሪ
1: ናውሪ
0: አሁን ነው እንግዲህ ወጣርቦት ነው
1: हां मैं जमाई हूं
0: हां मैं नौरी जमाई हां कहां गई थी सिर्फ ना कहीं थे जमाई अंदर ये मैंने ना कहा मैं मिला हुआ आके तो कहां था ये हां
1: ते टीवी ते टीवी
0: हां मैं मिस हो गया थी तेने सुनो टीवी प्रोग्राम के जो ऑफिस से लेते थे मैं जो रखे थे टीवी मैं कहां कहां करते रहा मैं
1: हां आया थोड़ा रहा बस तेरे में हुआ क्या हाय बोले पलाव में कच्चे रहे इनसे ना इनसे जब अंदाज़ ये तो कौन से किरण जगा हाँ ची नहीं ये मी तो ची तो वह रोता कहीं ची तुम्हारे कुने का पहले हाँ कहीं ना उस निकावा लाने तो हुआ
0: ಕರಪಾಕೊಂಡ ते तमाई कुंडोना किरनरा ने मेवा केंदे पकंदा एयो ना तिकरोय ने पेकन वनम उंगराम योन पनान मेउरी एफएम 89.9 में नम तबरोपा ते मे तोन रोना ये ना वंदे ते पकंदा एयो यारी दरगि ते पनान गा तिकरोय ना कोयम कुरक ना कोयरोम अ अति क्वासन मनी वे यरे ये की कतिकरोय ये ना ते नरा ने मेवा केन पेंदे पकंदा एयो तकान तेंगा बाबुनी पेन नो ऑन कुकुरे ने पेन नो उंगराय योन पनान मेउरी FM 89.9. Ah, nakom gero kwa tauroin nakonna ara miawa ke ayo ipun teme to na pendro ani ko ke ndesi ko yonara nam pandara po na re suwani miawa ke to poro wo wa hawai suwani miawa.